माई माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे बड़े भाग देवे परमेश्वर बड़े भाग देवे परमेश्वर।

मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। वाहिगुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तोड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु की थान। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। महापुरख जपण वाले जदों तीर्थां ते चले जाण तां तीर्थां दा भी उधार कर जांदे, क्योंकि तीर्थ भी पुकार करदे हन हे वाहिगुरु संसार दे जीव साडे विच इशनान करके पापां दी मैल सुट जांदे हन। कोई आप दा प्यारा भेज जिदे चरण पैंदिआं असीं फिर पवित्र हो जाइए। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई भगत नामदेव जी कहंदे हन कि इह सुभाग मैनूं ही प्राप्त होया, मैनूं

मानसिक तौर पे अवेसले होके पछड़ते जा रहे हैं। सिख वास्ते मेरी धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का हुक्म है, किसी परिवार विच बच्चा पैदा होवे, हुक्म है कि गुरु पिता दा कि पहला नाम तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछ के रखना। कोई किसी परिवार विच बच्ची पैदा होवे उस दा नाम तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पहला नाम पुछ के रखना। ते सतगुरु कहिंदे ने कि दूसरा नाम सिखा तेन पुछण दी लोड़ नहीं, तेरा नाम मैं ही रख देता। बच्चा होवे उस दा नाम लास्ट नेम सिंह रखना, कोई बच्ची होवे उस दा नाम कौर रखना। पर दुख आउंदा है कि जदों बच्चा किते हॉस्पिटल विच पैदा होंदा पहला नाम भी घर दे विच ही रख लिया जांदा है, जिहड़ा गुरु नूं पुछिया नहीं जांदा। ते जिहड़ा धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने हुक्म कीता है ओह ते नाम गुआच ही जांदा है। अज अफसोस है कि 14-15 साल दे बच्चियां नूं भी नाम पुछ के वेख लो कि तुहाडा नाम है की है। कोई दसेगा कि मेरा नाम कोई सिमी है, कोई गैरी दसेगा, कोई हैरी दसेगा। ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम है ते ना ही धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का बख्शिया होया नाम साडे पास है। अपने आप नूं जिथे सिक्खी सरूप च आपां दुनिया दे सामने पेश करके माण प्राप्त करना सी, ते अज नाम दे पक्षों भी आपां अलोप हुंदे जा रहे हां, गुप्त हुंदे जा रहे हां। आपां नूं अज परिवारक तौर ते सोचण दी लोड़ है। गुरु प्यारियो, सतगुरु जी का हुक्म

प्रकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं जोग भोग न

সদর না গাওকে তুমি আমার নতুন মায়া পবিত্রে দীক্ষিত আসানি মৃত শরীর লে আয়ে মেরা ভাই নহি তায়ে থে আমন দীক্ষান হর দিন লোট করতা হে রাম সদগুরু इंसान के जीवन का मुद्दा कर्म बंद धन गुरु अर्जुन देव पातशाह समाधि हम कुदरत चीज न जानिए वड्डा वे प्रवाह कर बंदे तू बंदगी जिथे घट में बंद बंदगी का स्वरूप की इंसान का जीवन बंद कहते हैं कि कारोबार छे कम कार बनते कारा दिन माड़ा लेके वाहगुरु का जाप भी करते बंदगी गुरु का सिख धर्म की किरत करता है यह भी बंदगी भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी है बाबा जी सत्य जी महाराज मानसा वाले बाबा जी कई बार अपनी पवित्र पावन सुनाते बचन करते सन वेला आदमी से धरती से भानी जो निकम्मा आदमी है वो धरती भी प्रमाणित कर्म कर्म कम कर्म इंसान का कर्म हर एक पानी पुरुष है उदम करेंगे जीव तो उत्तम करना इंसान का फल और उत्तम को फल लेना है मालिक भी बस जरा उत्तम ही नहीं करना और कुछ नहीं जो इंसान हिम्मत करते हैं उन्होंने मदद खुदा प्रभ है खुद भी इंसान की मदद और वाहगुरु भी खुद करे जीव किसान कम करता है घर बैठा ही कह दे आपे बीज उपवेगा आपे फसल घर आ जाएगी गलां ना आदमी किसान का फर्ज है धरती सवार के वत्तर वेले धरती में बीज पाल इतना उद्यम जरा है एक इंसान फिर धरती जो बीज को बाहर करना है किसान का काम नहीं ये वाहगुरु की बख्त बीज ही नहीं पाया धरती को सवारे तो वो किसान सुखा मर क्या कितनी जमीन उसने बोल इतना उद्यम किसान न था बीज पाल लेना बीज न उगाना उस वाहगुरु का फल और बख्श इसे सूझी फकीर में भी

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय उनसे निकली मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है जिससे मनमत्र आ जाता है तेरे लगी आर होते है अपने पाने जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दा पंछी की जाने आकाश के दा वड्डा पाई सजास की जाने गुरु के दा वड्डा है मेहमान न जाने दे वड्डे हो वड्डा पास तेरा मत भाई सज्जा चला जा गुरु कौन ये विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करी गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है जे तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने तक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जा चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड चलते आया की वेखिया जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनया बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण के सुदाम दोवे सुदीपर की कोल पढ़ते विद्या पढ़ी एक दिन समीपर जी की घरवाली ने कहा बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवे तुरंत है समीपर विखी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे हैं गल सुन कौन है लै थोड़े गए छोले हैं चने गल होटली बंद दिते किसी ने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे गरमकार की रेत बारी डांडी मार रात पै भगवान कृष्ण ने कहा सुनामे हूं कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामे ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चल चलते हैं रात इतनी बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुनामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लीए भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे तेरी सास संगत जिस वे छोले दंदा थले आए तो सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उत्ते बैठे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामिया कुछ खाना भी सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ नहीं बैठा भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी कहने लगे
खा रहे हैं। महाराज तो दुखी तो पता है, इसे पता तू मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते, एवं गरीबा ना प्रयास न कर। भगवान जी विजुक कर कोई समय में बात प्यारी साल से जैसे ने सुना देने तीजा फटका मारे, फिर आवाज आई। भगवान जी कहने लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन, पर कुछ खा जरूर है। मारे तो रुकी ना पता है। भगवान जी कहने लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की, तो सुनामी ने कि हमारे तुम बड़े खुश, तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है, ते बारिश हुई है, ते शरीर भुखन लग गई है, ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है, तो तुम कि कमरे उस वेले भगवान कृष्ण ने बचन कर दिता जाओ दलिंद्रिया दलिंद्र कहते हैं कंगले नीवी जरीर जाओ दलिंद्री तो पित्र प्रभाव किया है क्योंकि वन के खाना संत जी दिखा के खाना शर्मिंद जी ते खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है वह गंदगी खाता। भगवान ने वह वचन किया पूरा संदीपा जी को पढ़ के विदय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खानू कुछ नहीं मिलता है कि सुशीला ने की अपना दी। मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र स्वामी ने किया अपना पग भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पे मरते जी। भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्होंने को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मती तो जन सुनाने लेके अपना गांव वाली घर तक तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म या तो तेरी बने शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिख रहे हैं विप्र सुदामा दाल विप्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण डालती बाल सिखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया। स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री अखिल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मेरे तो गरीब आदमी किस तरह भी कोई मुलाकात होगी किस तरह भी कोई पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह भगवान को भी कहे जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला और अंदर जाने लगा दरबार में रो क्या वो किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल कर पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैं अभी पता थी गरीबा कहां होंगे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे। भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्ल वर्ता दवे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीज ला के सके पत्थे से तिलक लगा होया ब्राह्मण जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर ही खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ? ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रूड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है। रूप रूड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है। अतरंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यारा मेरा रामैया नामदेव जी बयान करते हैं।

चले गए, प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया, उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल, पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है, पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता, पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ता।

तीखे लुट रही है, कुसम फुल नुकी है, बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवरा।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए बरसात नाल, पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपनी

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है कै ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा असर हो गया। स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को। भाई गुरदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन, दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे, ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तू हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा है। पे चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तू हार पै नहीं सकदा, किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्हां जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, उह इक दूसरे दे मनां दीआं जाणदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

ब्राह्मण कहन लगा तनिया ए ठाकुर है जेड़ा इहदी सेवा करदा है ओ जो मंगदा है ओनू ओ प्राप्त हुंदा है।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ तो नहीं है कोई मखौल है ठाकर तेनु दे दिया तेनु की पता कि मैं पूजा करी दी जा जाके गौआ चार तना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नू देता अपना पिछा छड़ाने वास्ते पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नू गैल छुड़ावे गैल अपना पिछा छुड़ाया कि लै ठाकुर।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया। ठाकुर नो

तीसरा दिन चढ़ेगा। ते तन्ना कहन लगा हौं भी मुंह ना जुठालसा, तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे। ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना, ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना, तू मेरे नाल नरा।

0: ये बेनती की थी ता लिखी आए के पहला उस परमेश्वर ने तन्ने दी प्रीख्या ले फिर आप पत्थर दे विच प्रगट होके सामने बैठ गए कहन लगे तन्ने आ तो याद करदा सी ले मैं आ गया तीन दिन हो गए ने तू कुछ नहीं खादा ले तन्ने आ पहला तू रोटी खा मैं बाद विच खा लांगा तन्ना कहन लगा नहीं ये तुहाडे वास्ते है पहला तुसी छको फिर मैं छकांगा कहन लगे नहीं तन्ने आ तेनू तीन दिन हो गए ने भुखा बैठे आ तू कुछ नहीं खादा ते तन्ना हाथ जोड़ के कहंदा है जे इन्ना ही मेरा ख्याल सी ते पहला क्यों नहीं आ गए तीन दिन मैनू भुखा बैठाई रखी है तेरे ते बड़े सेवक ने बड़ी दुनिया तेनू भोग लवाण वाली है जे इन्ना ही दुख है ते पहला आ जाना सी ए सुन के भगवान कहन लगे नहीं तन्ने आ तेनू की पता जे तू तीन दिन कुछ नहीं खादा ते मैं भी तीन दिन कुछ नहीं खादा भगत भुखा रवे परमेश्वर किवें खा सकदा तन्ने आ मैं भी तीन दिन कुछ नहीं खादा मैं ते तेरा प्यार देख रहा सा भाई गुरदास जी आप बयान करते ने
1: गोसाई पर तक होए रोटी खाए छाए मोह लावे
0: गोसाई पर तक होए रोटी खादी छाए लस्सी नुकी है अते लस्सी भी पी ले।

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई, तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे, लै भाई तन्ने आ, रोटी तां असीं खा ली, हुण दस तैनू चाहीदा की है? तू याद कीता, मैं आया, हुण मंग तैनू की चाहीदा? तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा, भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए, लोक तेरी आरती करदे ने, पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने, भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप,
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने, दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख।

अंगोला वैरी गौ भी चाहिदी ते मज भी चाहिदी पर हुण लवेरियां लवेरियां कहंदे ने दुध देण वाली मज भी चाहिदी गां भी चाहिदी पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

तने ने नाम जपे प्यार कीता ओ तन्ना अनपढ़ नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे उस तन्ने ते धन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी तन्ने नु अपने नाल बठा लिया जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकद ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकद भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने जेड़े उपदेश करते ने ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो सारयां दी उपालना करन वाला है तू बंदगी कर तेरी भी उपालना करेगा दुनिया दी चिंता छड़ नाम दी चिंता कर क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। बच्चियां दे टुकड़े करा के गला विच हार पवाए पर सिखी सिदक नहीं आ रहा। मीर मन्नू ने सिखां नूं फड़ना एक लाइन विच खड़े करके पहला कहना मुसलमान बन जाओ, पर सिखां ने कहना सिखी नहीं छड़नी, उन्हां नूं शहीद कर देना। फिर दूसरी लाइन की वारी आनी, उन्हां नूं भी शहीद कर देना, ते जड़ियां सिंगणियां सन उन्हां नूं कैद करके उन्हां कोलों चक्की चलवानी, छोटे बच्चियां नूं उन्हां मावां दे सामने मारना, उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करके जिवें कोई फुल्लां दा हार बनांदा है, बच्चियां दे टुकड़े करके उन्हां दा हार बना के मावां दे गल विच पा देना, ते नाले कहना मुसलमान बन जाओ नहीं ते तुहानू भी इसे तरह खत्म कर दिता जाएगा। पर तन हन ओ गुरु के सिंह, गुरु कियां सिंगणियां जिन्ना जान ते दे दित्ती पर धर्म ना हारिया। ए जुलम हो रहा सी पर गुरु के सिंह कदी जुलम तू घबराई नहीं। उस वक्त दी ए इतिहासक बोली के गुरु के सिंह मीर मन्नू दे मुंह ते क्या करदे सन, मन्नू साडी दात्री असी मन्नू दे सोए।

सताए हुए हिंदुस्तान दे लोग जिहड़े गुरु साहिबां नूं पसंद करदे सन उन्हां विच मुसलमान भी सन जिहड़े मुगल हकूमत दा जुलम पसंद नहीं सन करदे। ओ सारे लोग गुरु साहिबां दा हमेशा साथ दिंदे रहे ने जिहड़े इंसानियत नाल प्यार करदे ने क्योंकि गुरु साहिबां दा इहो ही मकसद है रब एक है उन्हूं किसे नाम नाल याद

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखे आ, जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं। मैं भी उहदे नाल रहांगा ते जिदा सिर्फ भेस ही खालसे वाला है, जिदी रहत नहीं वो खालसा नहीं। खालसे दा मतलब खालस, जिदे विच कोई विकार नहीं, वैर विरोध दी भावना नहीं। जिदा जीवन विकारां तों उत्ते है वो खालसा, ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर वो गुरु के सिख नहीं।

संता महापुरुषा वाला भगता गुरमुखा वाला पर ना भगत ने ना गुरमुख ने ना सिख ने ना खालसे ने सिर्फ पहरावे दे नाल कोई इंसान गुरु की खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी गल नहीं कि इस दुनिया विच संत महापुरुष गुरमुख नहीं है। गुरमुख भी है ने भगत भी है ने महापुरुष भी है ने खालसे भी है ने पर बहुते धर्म तो दूर गुरु तो दूर दुनिया नु धोखा देंदे ने महापुरुषां दे।

गुरु दी रहत तू दूर, ओ गुरु की खुशी कदी प्राप्त नहीं कर सकता। आओ अरदास करिए, सच्चे पातशाह कर कृपा, उच्चा सुच्चा गुरसिखी जीवन दे, असलियत वाला जीवन, नकला भरिया जीवन नहीं, अंदरू होर बाहरू होर जेहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नू हमेशा औकड़ां दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ, वखरे

सब तन का गुण सतगुण गुण सतगुण जित मिल हर पड़ता सजना तू तन तन समर्पण कर मैं तुझ बिन अरे

वही नदी के किनारे थे, दुनिया उतारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा।

अमृत में प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रस है पर तीन दे भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हां दे अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्हां नूं झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हां दे अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओदे वास्ते तेल सरसों नु नपीड़ के कढ़ना पैंदा है सरसों किसा उगदी है बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा फिर लोग आपे कहेंगे भी फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक के दरबार चाके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रचना पवित्र करो सेवक के कन सफले करो प्यार नाल आखो सतना धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों को दिता साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार दी बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं तो कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी हो सा भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर ने इन्हों छाती ना ला के कहनी है पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नू जा तो प्यारी सात संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नू श्री चंद लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानू ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नू उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पालसी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे बेबे मेरे निरंकार रब नाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोध मोहंकार दी अगली सादी है बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत में ले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वो इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلا سیٹ بولنے پیچھے ساری سنگت

परम सम्मान योग गुरु साहब जी का परम पवित्र मुकदस पुनीत आपा गुरु साहिब सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

हे गुरु के प्यारियो, सर्वव्यापी सर्वशक्तिवान ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट जो अलमाइटी फादर है, जो सर्वशक्तिवान हर समय हर जगह व्यापक है, समूह कुवतां शक्तियां का मालिक है, उसका चिंतन करो, उसकी आराधना करो। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, अगे इकरार है, वायदा है, फल की मिलेगा, प्राप्ति की होवेगी, मुआवजे अंदर रिवार्ड इवजाना की मिलेगा। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोल सब पाप लह जाए। कई बार मनुख ना चाहता होया भी पाप कर जाता है, अकारण ही किसी नाल शदीद ख्यालातां दा टकराव हो जाता है, अकारण ही किसी नाल विरोधता हो जाती है। ना चाहते होया भी कई कुछ इत हो जाता। कौन चाहता है मेरे स्वच्छ ते कीमती लिबास उत्ते गर्द पवे, कालस लगे, पर फिर भी लग जाती, नादिया नादिया आलूदगी हो जाती है। मैं नहीं ना चाहदिया होया लैण देण विच वर्तारिया अंदर कई बारी तलख कलामिया अचेत गल्लां हो जांदियां ने, ते हौली हौली सूक्ष्म मैल लगती लगती भी कसाफत गलाजत का रूप धार जाती है, ते डूंगी हो जाती है। इस लिए सतगुरां ने आपके पावन फरमाना द्वारा फरमाया है, नर अचेत पाप ते डर जो तू उचेचे तौर ते ढा के अटेंशनली नहीं भी कर दो, ऐसे हो जाने वाले पापा तो भी तू सुचेत रह, बेदार रह, बच के रह। नर अचेत पाप ते डर। तो गुरु साहब जी ने ऐसा भी फरमाया है कि जे बिलफर्ज ना चाहद्या चाहद्या भी एक साफत गलाजत मैल लगती जाए, तो भी आशावादी गुरु ने सानू राहबरी बख्शद्या होया शाहकार कलाम अंदर फरमान किया है, परिया मत पापा के सन, हुण तू बेहिस बेहरकत बेउदमा ना हो, तेरी ना ढा दे कि मैं पापी हो गया हां। ते देख किवें आशावादी सतगुरु मेहरामत करते ने, पर यह मत पापा के संग पहले मिसाल दिती है, मूत पलीती कपड़ हुए, अगे ढंग दस्या दे साबून दे मैंने लगाना, दे साबून उस पलीत कपड़े नू, नापाक कपड़े नू जो मूत पलीती कपड़ हुए हो गया सी, दे साबून लईए उतो। ऐसे तरह ही परिया मत पापा के सन को तोपे नावै के रंग। कई पाउडर कई साबण ऐसे भी होंगे ने मैल भी ला देंगे ने रंगत भी दे जाते। नाम ऐसा साबण है, नाम ऐसा पाउडर है, नाम ऐसा मैल कट्टन वाला ते गुणा वाली चीज है कि मनुख के मन की मैल भी ला देंदा है ते रंग भी चाड़ देंदा है। इसलिए तू परमेश्वर का जस सुनिया कर, अथवा गाव्या कर, अथवा धारण करया कर, ते अमलाया कर। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोल तो सब पाप लह जाए। तो मन बच कर्म करके कई बारी पाप हो जाते ने, ते वड़े ही कीमती शीशा किसे मंगवाया होवे, भावे बिलजिम तो मंगवाया होवे, इंश्योर करा के बड़ी एहतियात नाल वड मुले बंगले दिनुकर आबनूसी फर्नीचर दे नाल आत वड मुले टेबल ते लाया होवे, उस दिन इस नूं घरों बाहर जाना पै जाए ते हैरान हो गए शीशे च मुंह नहीं दिसदा सोहना, साफ सुथरा चेहरा दस्तार दाड़ा नहीं दिस रहा, कारण की है? ते फिर पता लगा पे शीशे ते मैल पै गई। ऐन इसे तरह कई बार जे मैल ना भी होवे, एक होर भी कारण हुंदा, शीशे चेहरा नहीं दिसदा, शीशा सामने मुहर्रक होवे, मुतहर्रक होवे, हिलदा जुलदा होवे।

केवट भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नी आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिनका भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप।

अनेक पढ़े वो सिमरत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता छे भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख।

ताको कर पाहन अनुमानत, महा मूल किछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत ने भिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सेठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सी अंभव, आवर इच्छा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत पाता, शकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे, पुरख जीवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ध्याय है, ताके काल निकट नी आए है, रक्षा होय तैं सब काला, दुष्ट अरिष तरे तत्काला, कृपा दित तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मो हर हो, रिद्ध सिद्ध घरमो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट

करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब कुछ है जे देवे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुखवन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरवितो जित दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तो दवस्त कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद बाजे अनज सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरथे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आभर पूरे बिनवंत नानक गुरचरन लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब अधारो जिसका सब अधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होय उधारो।

हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दा पावन बचन साडे सन्मुख है। गुरदेव जी ने अपने इस बचन राही साडे नाल मिल के ते ए गल प्रगट कीती है कि भाई दुनिया दे अंदर

करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काज वनस्पति सगरी लिख गए हो लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

तेरो अंत न कहूं मैया कोट भरा दो हमारे हंदो कोट भरा दो हमारे हंदो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहे

गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा दी कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारिआं नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। ओह परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

सुख राजे हरि चंद्र घर, नार सतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाव दे, राती जाए सुने कुर्बानी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना, ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जा। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही, क्योंकि रंग लागत लागत लागत है। जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है, हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा, क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापा दा भागी बन जांदा, जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ए वी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक दी लोड़ है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर दे नाम दी लोड़ है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है, पर वह भोजन नाम का शक्ति है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना, ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती हुई। मन विच शक पैदा हो गया किधर जाती है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए, उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है भी किधर जाती है। तां राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। राणी ने समझा वही हुण आराम विच हो गया, ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है, राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रियास आया वही चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदे, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है, ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर देता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां, कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पे। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाम मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है जां नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठया त
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ

पुर के लोग बसेंगे तेई रेणी रे सोई तेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरहाई जानो रहत बिना जर

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहरोल कचोला, दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव इक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती, पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया, क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानो घूर के पिछा हटांदा ऐ, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा, हंजू वेख के कास तो हसदा ऐ, जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा, कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ऐ, जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा, कानो बंदिया कूड़ विहासदा ऐ, जे तू नेकियां नहीं कमौन जोगा। दिल्ली दिया सिख संगता ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।